ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखया रहाओ। जात मह ज्योत ज्योत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया।

राजा धर्म द्वारे गावन तुदन चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे।

रहाओ। सब सुरती मिलो सुरत कमाई, सब कीमत मिलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सातो सब तापो सब चंगे आई।

रासो जिन हर हर हर रासो नाम न पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जान सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जान नानक नाम परगासो।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट

बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सेखो सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशान, काट काट के पट पट की जान, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तारत तब देहे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचारै,

अंडज जेरज सेतज किनी उतपुज खान बहुर राच दिनी कहूं फूल राजा हवाय बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकठा सक्री श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग्रो दोष्ट जिते उठवत उत्पत।

कलमलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार तया

कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै ना कोई।

तितकार अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वेसूरे दुख।

पावडी, तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, ओथे तेरी राख अग्नि उदर माहे, सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगा हो गुर शब्दी पार पार।

0: सुनिहार सत्रियाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जे तू तुठा कृपा निदान, ना दूजा वेखाल। एहा पाई मूं दातड़ी, जिते हिरदय रखां समाल। अंदर सचा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल। जागुर देखा सामने,

इन्हें खासी आपसे संतान प्रमाण कर लेने की। आओ अगला समय सत्कार योग पैसा पैसतनाम सिंह जी आप जनों के तरह ही न्याल करने बड़े प्यार सत्कार बैठ के आप जन समय कीर्तन अनुसरण करने की कृपालता करनी जी। देव शीस फते बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ भिखै भिख खाय, माया मोह परम पै भूले, माया मोह परम पै भूले, सुत दारासों प्रीत लगाय, एक उत्तम पंत सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखो शरणाय, एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखो शरणाय, दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक देह कर हथ सतनाम। धन वाहे गुरु,

मन कुंचर मैं मंत अंक से ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख आगे खोल कोई आए मिले गो गाहकी ले गो महंगे मोल कबीर राम रतन मुख को थरी पारख आगे खोल कोई आए मिलह गो गाहकी ले गो महंगे मोल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु सवारे सतसंगी जनों सतगुरां जी दे अमृत बचन भाई साहब असानू कीर्तन रूप में सरवण करा रहे सन। बिखै बिन फीका त्याग रि सखिए नाम महा रस पीओ। आपां अर्थ भी थले देख रहे सां, सतगुरु ए बचन कर रहे ने, हे सखी हे मेरी सहेली, बिखै बन फीका, उंज बन दा लफ्जी अर्थ असी जंगल वन भी करने खां, इथे बन दा लफ्जी अर्थ पानी, इदा भाव अर्थ आपां करांगे विकार वाशनावां जीव दे चस्के। हे मेरी सखी तू उस फिक्के रस नूं त्याग दे, ते जे तू जिंदगी च रस लैना है ते पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम दा रस लै। उंज रस तो बिना कोई भी गल सानूं चंगी नहीं लगती। मैं गल शब्द वरत्या है, खाने विच भी रस हुंदा है, मिलन विच भी रस हुंदा है, असी फल फ्रूट खाने उहदे विच भी रस हुंदा है, इत्थों तक कि असी किसे नाल गलबात करने आ जां गल सुनाने आ उदों भी कहने आ इहदी गल च कोई रस नहीं सी। रस तो बिना कुछ भी नहीं। सतगुरां ने कहा नाम वो रस है कि जिस दे आउण दे नाल हर रस ही फिक्का पै जांदा है। रारा रस निरस कर जाने आ, होए निरस जदों वो परमात्मा दा नाम रस चखिया ते बाकी सारे रस जिहड़े सन वो निरस हो गए। होए निरस सो रस पहचानिया, ए रस छाडे ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। पर याद रखियो ए रस उन्नी देर तक ही चंगा लगदा जिन्नी देर तक ओ रस आया नहीं। जदों ओ रस आ गया इस रस ने अपने आप ही छुट जाना है। ए भाई साहब उन्हें कीर्तन करके गए। आओ कल असी ए श्लोक पढ़िया जरूर सी पर विस्तार नाल अर्थ नहीं कर सके। आप जितने गुरुदेव दे चरणा विच हाजिर हो संगत जी असीस बख्शो, क्योंकि मैं हर रोज कहना मंजी साहब किते भी कथा करिए उसका एक कारण है कि संगत साढ़े तो थले बैठी है, असी उत्ते स्टेज ते बैठे खां, आपां माइक ते स्पीकर च बोल रहे खां, पर पता नहीं किन्नी कु जुड़िया हुईयां सुरता ने जेड़े कदी भी माइक ते नहीं बोले, उन्हां दी चुप असीस भी कथा ते कीर्तन करन वाले नूं रस भर दिंदी है।
आप करो कृपा, अदब सहित उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ। कल ज्यादा समा आपां इस श्लोक ते अर्थ कीते, कबीर काया काची कारवी केवल काची तात, उस तो अगला श्लोक आपां पढ़िया कि जे इस नूं साबित रखना है, सफल करना है ते परमात्मा दा नाम जप। कल पढ़िया सी साबित रखा है ता राम भज, नाहे ता बिनठी बात। जे इस नूं सफल करना है देई नूं ते परमेश्वर दा भजन कर, भजन तो बिना सिमरन तो बिना नहीं ता तेरी ए गल गई, ए बात बननी नहीं, सफल नहीं होवेगा। फिर किन्ना कु भजन करिए, किन्ना कु समा आपां बंदगी करिए। ठीक है असीं मन नूं चलाण वास्ते नेम बनाने खां, इनूं बनाणू बनने खां, पर कबीर साहब जी ने अगला वचन कहा कि प्राणा तो पुकार। महाराज जी का वचन कबीर केसो केसो कुकी है, ये आपां राती कर रहे सां विचार। केसो का लफ्जी अर्थ आपां कीता सी जी केसव, उंज मैं अर्ज की शब्द ज्यादातर कृष्ण जी वास्ते वरत्या जांदा है, केसो केशव केसवा गुरबाणी च सारे आंदे ने जी। लोभ लहर अत नीचर बाजै काया डूबै केसवा, पर लफजी अर्थां ए जिहदे केस बड़े सोहणे ने, पर इहदा अर्थ आपां परमेश्वर नाल लवांगे। एक होर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बाणी है ना जी, ए पूर्व ते पछम दे जेडे नाम ने उहनां नूं मिलांदी है। फिर सुनियो, हालांकि पूर्व दे बहुत ज्यादा नाम जेडे ने उह देवतियां नाल संबंधित ने, बहुत सारे शब्द कृष्ण जी नाल संबंधित ने जी। लफज जदों आप जी पढ़दे हो सवैये कवल नैन मधुर बैन उह की है, जदों आप जी शब्द पढ़दे हो दामोदर, यह शब्द है दामोदर, दाम दा अर्थ रस्सी, जिदे उंज वैसे विद्वान अर्थ करदे ने कि जिदे लक दे दुआले तड़ागी बननी है। तड़ागी समझ ना जी, पुराने समय। पर प्रिंसीपल तेजा सिंह ने अर्थ किते, कहन लगे कृष्ण जी बाल वस्ता जदों यशोदा जी नूं तंग करदे सन उन्होंने रस्सी पा के बंध दिता से, उदू शब्द हो गया दमोदर, गोपाल शब्द वरतने। पर मैं बेनती करांगा सतगुरां ने यह सारे शब्द एक ओंकार नाल जोड़ दिते आ, जिथे देवता दे रूप च अर्थ आया कोई शक नहीं। हुण राम शब्द कह असी पढ़ने आ, गुरु साहिब ने एक बचन कीता रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मह सूर, उथे राम का लफ्ज ही अर्थ आप क्यों टीका पढ़ो दर्श रामचंद्र जी है असी पढ़ने। पर राम शब्द रामचंद्र जी दे युग तो पहला भी जपया जाता सी, प्रहलाद जी जप रहे ने राम नाम जपवो कराए खिरदय हर जी को सिमरन तरै। सो खैर मेरी यह बेनती है जिहड़ा शब्द केसो है ये अर्थ जिदे केस सोने ये परमेश्वर वास्ते वरत्या है। उंज सतगुरां ने बाणी विच जिहड़े इस्लामी मत ने शब्द संबंधित ने संबंधित शब्द ने उन्हां दी वरतों भी कीती। आप जी जाप साहब पढ़ दे संगत जी, जाप साहब दे विच अरबी

पानी ढोवा जो देवें सो खाई नानक गरीब। इनी कुर्बानी करके भी कह लगे दाता जी मेरी झोली च पाओ दात, नानक गरीब टह पया द्वारा हर मेल लिखो वड्याई। इसे सलोक नू आपां कल अगे थोड़ा जा विचारांगे। संगत जी आप जी ने बहुत टेक के सुनिया, एक मैं बेनती करनी है, पहला मैं गुरु साहब नू साक्षी जान के कोई धड़ा कोई पार्टी कोई कुछ नहीं, प्लीज आप जी दे सन्मुख गुरुद्वारा साहब की सेवा चल रही है। मैं कोई भी प्रबंध होवेगा मैं कथा करन आवांगा, सतगुरु कृपा करे। मेरी इच्छा है अज दी सारी माया जेड़ी है, क्योंकि अगे मैनू पता एक बारी करसानी वेले भी कीता सी, एक बारी थले कुंभी भी, यह नहीं कि मैं गनान लग पिया हूं, थ्री माउंट दो बारी कीता सी जी। ते इस करके जेड़े चार पैसे जेब च लैके जरूर पा के जायो। ते अज दी सेवा जेड़ी है कथा पेटा ये मैं मेरे वालों ने तुसी दित्ती सतगुरां दी है जी, तो सतगुरां ने यह जरूर अज माया जरूर पा के जाए। वैसे मैं मारे तो डर के कहना मैनू 30-32 साल हो गए ने संगत जी, दुनिया जो मर्जी कहे अजे तक मैं भेटा नहीं मंग के किसी तो लई। ते सच्ची तुहानू दसना मैं असी हुण कथा करने जो तुसी देंदे हो संगत जी पहला गुरु साहब कृपा करन 15%, क्योंकि ये गल्लां मशहूरी लई नहीं, लोकी अर्थ बड़े साडे गलत करदे आ। उह यतन हुंदा जो 15% सतगुरु जी दी जो दात है, पर तुसी इक अरदास करो इस जन्म च गुरु साहब वेखो जिहा समां लिया दे ये माया तुसी आप संगत च वरत्या करो, मैनू सिर्फ गुरु निष्कामता दी दात बख्श दे, यह अरदास जरूर करियो। इस करके मेरी बेनती है जी आप गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी इमारत बन रही अज सारे भेटा पा के जायो जो तुहाडे कोल है, बाकी तुहानू मंगर साहब दस देणगे जी। ये बैंक अकाउंट कह रहे सन जी तुसी 50 पाओ 100 पाओ महीने दे महीने जिन्ना भी आपां पा सकने जी, ये सेवा जरूर करिए। मैनू सीधी जी गल ये गुरु घर शुरू तो हुंदा रहा, इस करके मेरी बेनती है जे सारे आप जी सेवा पा के जायो। बाकी सारी डिटेल तुहानू मंगर साहब दस जाणगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्हें कुछ जोगो तिल फुल दाते ने दिते ने तुहाडे, मैं सच्ची कहना मेरे पल्ले कुछ नहीं, तुसी संगत देंदे हो, यह अहंकार दे निम्रता दे शब्द भी नहीं अहंकार वाले, यह तुहाडे दिते विचों कोई सेवा जिन्नी को मैं कर सकिया वह जरूर करांगा। सब का धन्यवाद। आओ जी नाम जपिए सारे, कोई रसना विर भी वांझी ना रहे। पहला दास बोलेगा फिर आप सिंह सारे बोलियो, उन्हें नाल नाल सेवा कर लिया जी। मेरी बेनती है जी करो कृपा।

तुम मात पिता, बारक तेरे तुमरे कृपा में सुख, कोई न जाने तुमरा उचे ते सगल समग्री तुमरे सुतर।

पाथ्य सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ। अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा निरपहु पे गुरचरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो मनहारा। कंठ लगाए

है जिस अगे सब निबन हर सज्जन दा मन लग्या किसे न देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। हे गरीब नवाज सचे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सतगुरु जीओ अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शे ने। सतगुरु जी आप जी दा कोटान कोट शुकराना है, धन्नवाद है जी। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिवस सुख शांति नाल बतीत होया है। इस वेले रात्रि दे दीवाना दी समाप्ति कीती है। सतगुरु जीओ आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने। होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी। आप जी कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत करनी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दीदारे बख्शिश करने जी। सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा।

ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै तनवंता होए कर गरबावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिठे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म कराय हों तारे श्रम पावै सगले बिर थारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व कीरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब इस को सुख नाही कोई जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तार है को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मुह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लख को उठतावे तृपत न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग बिख्या की करै नह त्रिपतावै खाप खाप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो के शकीनों सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै कर बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिस्थार सब कछ उसका उ करने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंतर एकै सोए अपने चले तो आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुरु बहुरु अवतार अष्टपदी संत कह दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जिउ लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थां को नाहे नानक संत पावै थां ओए पी गत पाहे संत का निंदक महात पाई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावे ता उस का पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते तरै संत के दुखी कहो नाही ठाओ नानक संत पावै तां लय मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै
संत के दुखी।

नाम सुखमनी। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ईश्वर आख सिद्ध आख किते किते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव किते आख आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे हे ताक न सकह के जीवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखी सिर गावार गावार सो दर के हा सो कर गे हा जित वै सर्ब संभाली वाजे नाद अनेक संखा किते वावन हारे किते राग परिशो कहियन किते गावन हारे गावै तुहनु पौन पणी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंदें दासन बैठे देवते आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह कहानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित नावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई रंगी रंगी भाती कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव दृष्टि वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहू साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शरम पद झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जी तै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वा जहनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिस दवरा साध संयोग जोग दुकार चला वह लिखे आ वह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेस एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसार एक भंडारी कलाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर नाया वै बहुता इह विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सुरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश साध अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जी भव लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ाया की है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्लाया काश की कीटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवा नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दन मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया पानी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत
ਗਿਆਨ ਖੰਡ

अपंगं बेपुते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये। श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख फिरो घर जो जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदातिक संत समूह अनेक मती के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रत्ती बिने एक रत्ती के मातम तंग जरे जर संग नूपू तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान के पूपली विदन्यावत शीश न जात विचारे। इते पय तो कहा पय पुपतंत को न गई पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गुड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पेख भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम से दहारे। तीर्थ नान दया दमदान सुसंज मने मनेक बसे कै वेद पुराण कतिब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है। पावन आहार जति जतार सब सुबिचार हजार के दिख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है। सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो सात सुना दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर हरिन मरूर मुसन मातम तंगन मान मलेंगे। श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार बचार सार की तार पचैया तूर्थ देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया। साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक नेक सुवेक दिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविक भगवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजिंद्र निराधप जो अंतरलोक को राज करेंगे। कोटि स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है भगते नर फिर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। नाथ फिर लिये सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायु। साच कहूं सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायु। काहू ले पान पूछ तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायु। काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीश निभायु। को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायु। कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री

प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लेंते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे।

डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ सतनाम। वाहिगुरु साहिब जीओ, राग सूही छंत महला चौथा, घर तीजा एक ओंकार सतगुर।

0: पर कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहत अनंत लाटू माधानिया अनगा पंखी पौंदिया लैना सा सुवे चाड़ पवाई अजंत नानक पौंदिया गणत नान
1: मंदर मंत वाय सोए पै कृतन चे सब कोए नक नक हसे चले से रोए उड़ना जाई सदना होए

कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो एक संजम दुख जाए बोड़ी जिंदगी संतो गई।

0: जति सदावे जुगत न जाने छड़ बह घर बार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: सुजग नानका सचावे के सोए सपनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नमे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पढ़ तुर कर भजना कुछ पाया।

जात मह जो ज्योत मह जाता कल कला भरपूर रहा। तू सत्ता साहिब सिफ सवाल्यो जिन की तिसो पार पया। कहो नानक करते किया बातां।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज को दिपाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कारण उन्हें दयावताए सब साई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय। दसा पातशाह के पुत्र आत्मा स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पास दार दाते अंतर के घर से बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुखते हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम छपिया वन चख्या दे चलाई। तेग वाहे देख निटकी ददना प्यारे सत्यारे की कमाई दते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां चले आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा से किसे देखे सांसवासा सिंह भाई तिना नहीं कमाई दते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु पंजा गुरुद्वारे दते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता वह चित आवण का सदका सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा जी साहब रखा आए देख देख की फतेह बृद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बुरबले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रायत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंदे बुंगे जुग जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत तुझी मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की महाराज पंथ सदा सहाय दार जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपने पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दार से अठमल दान अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटिया जी ओट गुरु न्यासर द्यासरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे की प्रभाज जी आपके चरण कामना दरदास मिनता जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हो संगत दर्शन दर दे के निहाल उतार दियो मेहरबानिया के पाठ हो अनुरागी सिंह ने आपके चरण के आशा जुआर के कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा प्यार की कृपा करो हो या भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खन प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपालता करो जी। अगो तो शुद्ध पित्र बाणी प्यारी मन बुद्धि बख्शिश करो भी महाराज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता पितर कड़ाप शाह देगा त्यार कर खा देने लतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गुरु जी महाराज कृपा करो आप जी बख्शिया दाता जो नगर तुट सवार प्रवान करें दता आप के चरणा सेवा कर रहे सारे टैली संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाडी करा बख्शो अति सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा दी भावन मखन बालता करो। गुरु जी महाराज दतार जी हो अमृत वेल तो लैके दाते आई हैं साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगत दर्द तेरे पर भेटा बना शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी महाराज बेहद परिवार वालों बेहद माया बेहद रसदा आपके नगर देगा वास्ते हाजरी ने प्रवान करो दता मंदिर वास्ते हाजरी ने प्रवान करो सब जी कमाइया सब लोग घर दुआ करने की बालता करो जी। गुरु जी महाराज रोसा सचे पातशाह दर कर सेवादार भाई मोहता सिंह जी इंडिया तो राज खुशी वापस आने की खुशी में दता अब चरना धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दिया फिर तुम्हारा घर दार प्रवान करो फिर करो मेर प्रात भाई मोहता सिंह सिर रखो तो हमेशा तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ कर बखने की बालता करो जी। गुरु जी महाराज सेव कौन खालसा पंथ एकता सुहाग प्यार बख्शिश करके सतन दास बख्शो चैना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शन की बात करो जी। गुरु जी महाराज दूर दुराए कराने बैठी लाइव कथा की शर्म कर रही सारिया संगत की हाजिर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ तो तारा उन्हें बख्शिश की संगत बख्शे संगत आपके चरणा धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर न गुरु घर सेवा सिंह दास संगत माया पेटा कर चरना प्रवान करो बख्शा साहब जी कमाइया सफल करो कर जवा दो तार साफ संगत दुभकामना पूरी करो जी मेहनत करो सेवा प्रवान करो पुनः बख्शो पवित्र रूप नामी बख्शिश करके तार अपना लड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आके बख्शो शुद्ध पित्र सवाल की बात करो तार रहते पाठ कार सवार के चरना तरह की बनाओ सही प्यारे मेरो जी ने मैंने आपका नाम जता नानक नाम चढ़ी कला तेरे पा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਗੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ।

अब दुख त्यागै, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागै, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिकसै दिखै माए, गुर सिख

है, सब रस मीठे मुख लग है, जा हर गुण गावे, हर जन परवार सधार है, इक ही कुल सब जगत छड़ावे, जो किछ किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाए दा, आपे वरताई, लाला हाट विहाजिया, क्या तिस चतुराई।

रहाउ। लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै, धन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै। त्यों हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावै। बिख संचै हटवाणिया बह हाट कमाए, मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए।

आपे गौड़ी बैरागन महल्ला चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया घर मंदिर घोड़े खुशी मन अन रस लाया हर

रखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखदा हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के है याने, धन धन गुरु गुरु सतगुर पादा

आवै, हर भगत सुनै तिस सतगुर मिलियै, टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़ियै, जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही, नानक तिस गुर मिल उदरै हर गुण गावाही। महला चौथा, गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभकीनी, मेरे मन तन मुख हर बोली, गुरमुख रंग भया अत गूढ़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर प्रभ की हो गोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दिनु जगत सब गोल अमूली। रहाओ करहु बबेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सबाई, हर निकट वसै हर कौली, हर हर निकट वसै सब जग कै, अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुरपूरै, सिर वेचियो गुर पहमोली, हर जी अंतर बाहर तुम शरनागत, तुम वट पुरख वडोली, जन नानक अनदिन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीश्वर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामै नाम समाते। रहा हर हर नाम, हर हर जग अवखद।

मत गुरमत नाम समानी गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो किथे हर पहु नसी है।

आओ। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हौं मैं कंडा ही। जो जो चल है चुभे दुख पावे, जमकाल सह है सिर डंडा ही। हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण पव खंडा ही। अविनाशी पुरख पाया।

था, इस गढ़ में हर राम राय है, किछ साध न पावे तीठा। हर दीन दयाल अनुग्रह किया, हर गुर सब दी चख डीठा। राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाओ, हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा। जिन का जिन गुर बचन सुख

बिसियर कौ बहु दूध पियाइए, बिख निकसै फूल फुलीठा, हर प्रभ आन मिला बहु गुरु साधु, कस गरुड़ शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचया, पूरे गुर कह आ गए, सतगुर दाता नाम दृढ़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागे, राम गुरमत हर लिव लागे, रहाओ घट घट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देवु काट गुरु कौ, मेरा भ्रम पाओ गुर बचनी भागे, अंधियारे दीपक ज्ञान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिन सुबिनासियो, कर वस्त लही मन जागे, साकत बदिक माया तारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे।

आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहत, गुरमत मनुआ गावे, वडभागी गुर दर्शन पाया। धन धन गुरु लिवलावे, गुरमुख हर लिवलावे, रहाओ हमरा।

करते ही प्रकाश हमारा पहयो पटना शहर बिखे पौलयो तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहब कमाल जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है नाल दी संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है भावें दिया क्योंकि ये लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है जो नाल दे संगी साथियों ने पूछा पीर जी की गल ठीक हो अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया का मालक वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है कोई बंदगी वाली रूह जुड़ी हुई रूह जिसनू पता है जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है बंदगी तो आप सारे करते हाँ पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है नेड़ा है दूर ना जाने नित सारे संभाले नेड़ा ना ही दूर ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए उस वक्त इतने साधन नहीं सन तुर के लोग की यात्रा करया करते सन तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे जदों उत्थे पहुंचे दर्शना की इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना किया कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदी ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछारो हमरे सब बैरियन संघारो जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी हिंदुस्तान की लाज रखी भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे दीन आखदे ने जिहदा कोई आसरा ना हो साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिरसदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साढ़े लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

की फतेह। बेनती है बच्ची दे परिवार नूं कि ओ बच्चे दा पल्ला बच्ची नूं पकड़ाउणगे, रागी सिंह नाल नाल पल्ले दे शब्द दा कीर्तन करनगे। बेनती है कि पल्ले दी रस्म अदा कीती जावे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतियां धर्म नहीं हारिया।

लायो। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द में

श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ वीछणया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। गौंड महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता ज्यों त्रिखावंत बिन नीर

हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपता है, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो अर तीर।

0: मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सात शरीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सात शरीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप सात संग जी, आप जी वडभागी हो जो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच इस खुशियां दे समें जुड़ बैठे हो। सो सब तो पहला दास अपने समुचे जत्थे वालों, गुरुद्वारा साहिब दे समुचे प्रबंध वालों, सुभाग जोड़ी भाई अमृतपाल सिंह जी अते बच्ची बीबी गुरमनप्रीत कौर अते उन्हां दे माता पिता समूह परिवार नूं लख लख वधाई देंदा है जो सतगुरां ने कृपा बख्शिश कीती है। इन्हां ने अज ग्रिश धर्म विच गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी का ओट आसरा लै करके प्रवेश किया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी विच जिथे सारियां ही नातियां नूं बाग खूबसूरती दे ढंग दे नाल निभाउण दी सतगुरां ने जाच जुगत दसी है, उत्थे खास करके पति और पति दे रिश्ते उपर सतगुरां ने बहुत विस्तार दे नाल जिथे दुनियावी रिश्ते नूं समझाण वास्ते सवारन वास्ते सतगुरां ने बेअंत दलीलां जुगतियां दित्तियां हन, उत्थे इसे रिश्ते राहीं सतगुरु दतार पिता महाराज जीवात्मा ते परमात्मा दी वी गल करदे ने वी उह अकाल पुरख वाहिगुरु साडा पति है, बाकी असी सारियां जीवात्मा उस दीआं पत्नियां हाँ, उस दीआं औरतां हाँ, पर सारियां नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु की छोह प्राप्त नहीं हुंदी। सब सुहागण जिहड़ियां ने उह परमात्मा परमेश्वर दे दर ते प्रवान हुंदियां, उह सुहागणां जिहड़ियां वाहिगुरु दे हुक्म विच परमात्मा दे भाणे विच चलदियां ने। ते संसार दे नातियां नूं वी गुरु साहिब जी ने समझाया वी जिहड़ा प्राणी जिहड़ा जीव जिहड़ा सिख इस तरह निभांदा है, एक दूजे का हुक्म मन के एक दूजे की वारता मन के आपस में तालमेल रख के जदों सिख ते सिखनी सतगुरां दी बाणी का ओट आसरा लैकर के तुरदे हन फिरे जिंदगी ए जीवन सदा लई आनंदमई बन जाता है। सो आप दे चरणा विच ये बेनती है कि आप जी ने सदा ही धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया विच रहना है, सतगुरां दे सिद्धांत नूं गुरु साहिब जी की बाणी नूं ही अपने जीवन का आधार मनना है। खुशी की गल है कि परिवार खास तौर पर काका अमृतपाल सिंह जी जो गुरसिख हैं चढ़ती कला वाले हैं, इन्हों का जथा सारे वीर भाई रणवीर सिंह जी, भाई हरप्रीत सिंह जी, भाई सतिंदर सिंह जी, सारे ही ये बड़ी चढ़ती कला के नाल बे एरिए जिथे भी गुरु घर जिते भी गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा से सदका दस्तारा सजाने की गल आती है, दस्तारा की सिखलाई की गल आती है। तो ये सारे वीर अमृतपाल समेत सारे ही बड़ी चढ़ती कला के नाल चाह के नाल सेवा निभाते हैं। सो असी इस गल का माण महसूस करते हाँ कि गुरु साहब सच्चे पातशाह जी इन्हां ते कृपा करन, होर भी इस तरह ये अपना योग गुरसिखी विच गुरु की सेवा विच पा सकन। आप दोहां ही परिवारां नूं एक बारी फिर लख लख वधाइयां दास दिंदा है। सो सब तो पहला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो सुभाग जोड़ी नूं गुरु घर की बख्शिश है सिरोपाओ दिते जाणगे, नाल ही साडे पास दो बुलारे हन, सत्कारयोग सरदार दीप सिंह जी अते सत्कारयोग सरदार गुरमीत सिंह जी खालसा ट्रेसी गुरु घर तों पहुंचे हन। सो दोहां बुलारियां नूं दास जीवां आखदा है। सब तो पहला मैं बेनती करांगा भाई दीप सिंह जी ओ आकर के अपने विचार संगत दे विच रखन, ते उस तो बाद गुरमीत सिंह जी खालसा ओ अपने विचार या इउं कह लईए भी सुभाग जोड़ी नूं असीस रूप विचों शब्द कहणगे। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जहान है। आई एम गोइंग टू दादरा। इट हैज 6 बीट्स इन इट। विभाग इज 2-3 प्लस 3। दिस इज हाउ यू डू थाली काली। दा दिन ना दा तू ना। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले इट।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सरबजोत है। आई एम गोना शो यू हाउ टू प्ले दादरा। द बाग इज 2, 3 + 3। ताली काली इज

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरशांत सिंह है। आज मैं कुंगा रूपक पूरे विभाग है 3+2+2 43 खाली 3।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हीरन सिंह। टुडे आई विल डू लूपक। इट हैज 7 बीट्स।
1: ताली
0: खाली दस
1: तीन
0: तीन
1: तीन तीन
0: ना
1: तीन तीन ना तीन ना तीन ना
2: किसी हेल्प कर दो
0: तीन
1: तीन तीन ना तीन ना
0: दस

आगे हम सिंह आ जाओ। कोले सोनिहा और अगला बच्चा हिम्मत सिंह, आप जी ने वही सारे ताल जड़े टीचर ने दसिया ने उन्होंने 5 मिनट बजाने लिये।